0: कैसा है, कि कैसा है सासे
1: Ici Eric Giagal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal.